गल्ली पे दम दिला इनसे तन में से दौर के सरो पे देखा है तो पंजाई संपिया तू पामा आई दा पामा या जा तल्ली बनूला वो कोल मंगी ना नडवायो पन ना दे इकाए कुनो इकाए पिगल कुनो इकाए सालू इकाए कनारी Atalan di mata asisnya yang baru. Mengina salim bengkau pernah ke mana deh? Kau boy pen pen baru. Bukan mengina dasar pernah ke mana?